आज सिंह रहे हैं, पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सुतम ते पाऊ, सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ द मुझे अभर आये, मरण काल का त्रास ने भर आये, हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सुरजु कर और अच्छा, राख लेह मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए सब जीव अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल योगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दयांत जशन उपजायो, आद्य अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकान को

संतन सुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है, गड़ गड़ के बड़ बड़ की जाना है। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कबह, तुम मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रह।

सर्वठर्म हो सहाई दुष्ट दोखते लिह बचाई। सवैया पाएं गए जब ते तुमरे तब ते को आंख दरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने हो। सरी असबान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो बखाने दोहरा।

विसारण। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना, सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

रहे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसया, जन इच्छा सब बजाइया, सदा कुर्बान किता गुर बिटो, जिस दिया वड्याइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस किते, काल कंटक मारिया,

पुण्यवान। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अधारो। जे को खावे जे को पुंचाए, जिसका होए उधारो। ए वास्तव तजी न जाई, नित नित राखो उधारो। तम संसार चरण लग दरियाए।

वाह वाह धरती आनंदपुर दी जिथे गूंजदियां शहनाइयां तेग बहादुर गुरां ने जिथे जोड़ विरतियां लाइया मां गुजरी दियां यादां रतू कण कण विच समाइया गुरु गोबिंद सिंह पंथ सजाके खट्टियां धन वड़ियाइया वाह धरती आनंदपुर दी जिथे गूंजदियां शहनाइयां आनंदपुर साहब दे मेले दी सिफत वीर बलिहार सिंह सोढ़ी सरंगी मास्टर बीबी अमनदीप कौर बीबी हरप्रीत कौर दी जबानी इंज सरवण करो।

विश्वास काती हाकमां दीआं झूठियां सोह ते इतबार कर। दसम पिता ने आनंदपुर साहिब दा किला छड के सरसा कंडे जंग लड़न तो बाद चमकौर गढ़ी अंदर 1.25 लाख नाल इक नूं लड़ा के पंथ दा हुकम मन भाई संगत सिंह नूं कलगी तोड़ा सौंप चमकौर गढ़ी विचों चाले पा दिते। सतगुरु माछी वाले जंगल विच जा पहुंचे, झाड़ियां नाल अड़के जामा लीरो लीर है। हाथ ते बाज नहीं, सीस ते ताज नहीं, पंज प्यारे नाल नहीं, चार साहिब जादे नाल नहीं, पैरां विच जोड़ा नहीं, हेठा नीला घोड़ा नहीं, रोड़ा ते कंडिया दी सेज ते सुते होए प्यारे मालक दा धन्नवाद करदे होए गाउंदे ने मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना।

अर्शी प्रीतमा दिला दिया महिमा वे, उपमा किस तरह करा बयान तेरी, तेरी महिमा है अपर अपार दाता, उच्चा नाम ते शक्ति महान तेरी, रता सिदक नू आंच नहीं ओण दिती, पुरजा पुरजा होई सुल्तान तेरी, कीती दुखी मजलूमा दी तुसी राखी, उठी हक ले सदा किरपान तेरी, चलमन सिंह टंडा मान नाल कहिंदा, हिंदी खालसे विचों पहचान तेरी। इस दुनिया ते वड्डे वड्डे रहबर दानी सूरमे हो गुजरे, पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वर्गा कोई दानी नजर नहीं आया। हीरे मोतियां दे बेशुमार दानी, सरबंस दानी नहीं कोई कहोण वाला, अपने पिता दा हथी बलिदान दे के कोई नहीं दुखियां दे दर्द वंडाउण वाला, टोटे जिगर दे हुंदे शहीद तक के नगमे खुशी दे कोई नहीं गौण वाला, दशमेश जिहा ना दानी दलगीर दिठा अखा सामने पुत मरवाउण वाला।

जी दा हुक्म है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा किसको फकड़े सब मुकदी चली रहन, रहन गुआई सोए के दिवस गुआया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार।

करामी सगल कटांके अंतर्यामी अपने गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुम्हारे स्तर तुम दे नानक और न जान कोई निर्तन को तन तेरो नाओ जड़ा निर्तन है गरीब है निमाना है हे वाहिगुरु जी आपके नाम का ही तन उसके पास है निथामे को नाओ तेरा थाओ जिस पास कोई थाओ नहीं जिसका कोई मान नहीं वाहिगुरु जी आपकी का नाम ही उसका थाओ है निमाने को प्रभ तेरो मान जिसका कोई मान नहीं वाहिगुरु जी थोड़ा नाम ही उसका मान है सगल कटांको देवो दान सबनु नाम दी दात आप ही देन हारे हो करण करावण हार स्वामी हे वाहिगुरु जी आप ही संसार दे कर्ता पुरुष हो सगल कटांके अंतरयामी सब दे कटां दी जाननहार हो अपनी गत मित जानो आपे अपने विचार ते अपने घर की मर्यादा तुसी आप ही जानते हो आपन संग आप प्रवराते सारिया दे विच ते सारिया दे अंदर तुसी आप ही समाए हुए हो तुम्हारी उस्तत तुम ते होए जिससे आप कृपा कर दे हो उही तुहाडी उस्तत कर सकता है हजूर नानक और न जान सकोए कोई तुहाडी होर उस्तत नहीं जान सकता अपने मन दे अधीन सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम फला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बिखाणी

ओक निर्गुणियार इनानिया सो प्रभु सदा सुमाल जिनकी आतिश चीत रख नानक निवी नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराणी कमन मूल ते कमन दृष्टानी

निर्गुणियारियानिया तो प्रभु सदा सुनाल जिनकी याति से चीत रख नानक निरी नाल। गुरु साहिब फरमाउंदे ने ऐ गुणहीन प्राणी ऐ इयाने प्राणी तू वाहिगुरु जी का सिमरन कर। उस वाहिगुरु जी ने तैनू बनाया है, वाहिगुरु जी जीवन दाता हन, वाहिगुरु जी प्राण चलान हारे हन, तां ते तू उस वाहिगुरु जी का नाम ही चित विच रख जो तेरे अंग संग लोक परलोक सहायता करेगा। रमैया के गुण चेत पुराणी कमन मूल ते कमन दृष्टानी। ऐ जीव तू उस वाहिगुरु का नाम जप जो घट घट वसिया है, सब थाई रमिया होया है।

0: आई तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तू ठाकुर तुम पैर दास हे वाहिगुरु जी तुसी साडे मालिक हो स्वामी हो असी तुहाडे चरणा विच बेनती करदे हां जियो पिंड सब तेरी रास तुसी सानू इह शरीर भी दित्ता है जीवन भी दित्ता है तुसी प्राण दाते भी हो सारियां दातां तुहाडियां ही बख्शियां होईयां हां तुम मात पिता हम बारिक तेरी तुमरी कृपा मैं सुख कंधेरे तुसी साडे माता पिता हो असी आप दे बच्चे हां तुहाडी कृपा दे सदके असी सारे सुख भोग रहे हां कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत आप बेअंत हो वाहिगुरु जी असी तुहाडा पारावार नहीं पा सकते तुसी आप उच्चे तो उच्चे हो सगल समगरी तुमरे सो तरधारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी सारा जीव जंतु 84 लाख जून जो तुसा बनाई है उसके सूत्रधार तुसी आप ही हो तुम ते होए सो आज्ञाकारी सारे ही जीव तुहाडी आज्ञा विच ही हन महाराज तुमरी गत मित तुम ही जानी तुहाडी गति और तुहाडे घर दी मर्यादा तुसी आप ही जानदे हो आप कैसे हो पातशाह तुसी आप ही जानदे हो नानक दास सदा कुर्बानी गुरु साहिब फरमांदे ने सानू उस वाहिगुरु जी तो सदके सदके जाना चाहिदा है सदके सदके जाना चाहिदा है
1: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
5: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. Assi bol rahe haan Gurdwara Western Singh Sabha Williams Lake BC Canada to. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3374 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3374 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

मेरे सतगुरा, जब गुरु बोले तब विषम हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप मेरा सखा।

पे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम सापे तन तन गुरु नानक जन केरा। जित मिले चूके सब सोग संतापे गौरी बैरागन मैला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया। कर मंदर कोरे खुशी मन अन रस लाया। हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। रहाओ किस रूप नहीं किस जात नहीं किस ढंग न मेरा। क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जप

ताप तीर्थ साप सब हर कै बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंत

आओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जग के अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरे सिर वेचियो गुर पहमोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी कित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते इनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर

दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जी काल के मुख जगत सब ग्रसिया गुरु सतगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूर नर काचे तिन को जन्म मरण अत पारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीचे मन निरत करे करनाचे आपे साहा वडे प्रभु स्वामी हम बन जा रहे हैं ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के सा प्रभु साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे काने जिससे तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणे राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूर मुगद असुद मत होते गुर सतगुर के बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया ते साकत मूड दीवाने तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोय पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभु सदा नाल है स्वामी कौ किथे हर पौ नसी है हर आपे बस ले प्रभु साचा हर आप छाए छुटी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है सतगुरु की शरणा।

निज कर वसी है गुरुमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसी है मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लै लाहा हर मन हसी है हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखी है मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटी है ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न फिटी है मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर जित सेवे है लेखा चुटी है जन नानक हर प्रभ पूरे किए किन मासा तोल न कटी है गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन तन लोच कणे।

हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबुद तुम हर जानो मेरी अंगिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंख बताया हर मिलिया आए प्रभ मेरी अंदिन अनद पयावड पागी सब आस पुजी जन केरी जगन्नाथ जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर रासो पै जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुआ खिन न टिके बहुरंगी दह दह दिस चल चल हाडे गुरपुरा पायावड पागी हर मंत्र दिया मन खाडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साडे पर उपकार

क्यों मनमुख गर्व गला दे। हम जानिया कछु ना जाने, आगे जो हर राखे त्यों ठाडे। हम पूल चूक गुर कृपा तारो, जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परया। मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर डंडौत पुन वड्डा है, राव साकत हर रस सा।

हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार।

रहाओ। हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है, मेरे सतगुरु लाग बसीठा। जिन गुरु बचन सुखाने हियरै, तिन आगे आन परीठा। मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा। विषयर को बहु दूध पियाई है, विख निकसै फूल फुलीठा। हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु, कस गरुड़ शब्द मुख लीठा। जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया। पूरे गुर के आगे सत गुरदाते नाम दिड़ाया, मुख मस्तक पाग सबागे। राम गुरमत हर लिव लागे, राम गुरमत हर लिव लागे। रहाओ कट कट रमैया रमत राम राए, गुर शब्द गुरु लिव लागे। हो मन तन देवो काट गुरु को, मेरा परम पौ गुरु बचनी पागे। अंधियारे दीपक आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे। अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो, कर वस्त लही मन जागे। साकत बदक माया तारी, तिन जम जोहन लागे। उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया, ओए आवे जाए अपागे। हमरा बिनो सुनो प्रभु ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे। जन नानक की लज पात गुरु है, फिर बेचो सतगुर आगे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अंकारी अंकार अज्ञान मत। गुर मिले आप गवाया, हों मैं रोग गया सुख पाया। तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन बिछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को,

मन अन दिन अन ग्रह जियो हर पायड़ा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे वेखे हर आपे कारे लाया जियो इक खावे बस तोट ना आवे चिकना पक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इकना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौरी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल न लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा

हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, वड पागी नाम समाही जियो, नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ दिठड़ा नैनी जियो, मेरा मन तन बहुत गहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो, मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हूं रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा पूरिया मेरे गोविंदा, हर मिलिया मन वधाया जियो, वारी मेरे गोविंदा, वारी मेरे प्यारिया, हो तुद विटड़ियो सदवारी जियो, मेरे मन तन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा, हर पूंजी रास हमारी जियो, सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा, हर मेले कर रह बारी जियो, हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा, जन नानक शरण कुमारी जियो, गौड़ी माज महला चौथा, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोजी जियो, हर आपे कान उपाय दा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कट भोग दा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा, आपे सतगुरु जोगी जियो, आपे जगत उपाय दा मेरे गोविंदा, हर आप खेले बहुरंगी जियो, इक ना भोग पुगाइंदा मेरे गोविंदा, इक नगन फिरे नग नंगी जियो, आपे जगत उपाइंदा मेरे गोविंदा, हर दान देवे सब मंगी जियो, भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराइंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए त्यों वाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर तब जी हर प्रभ गाजे जियो, आपे शरण पवाइंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो, वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो, गुर सब जी पाई है हर प्रीतम राओ जियो, वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर नीवा जियो, मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो,
मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो, हौ नाम विटो कुर्बान जियो, हौ नाम विटो कुर्बान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दत्तो संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो, गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो, हर वो दयाल हर नाम से आई जियो, जन नानक हर रस पाई जियो। महला पंजवां राग गौड़ी गुआरे री चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। किन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई, रहाओ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया, हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्तर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हों मैं के फासा, राज कमावे दह सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत तुपने पे खारी, एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हों मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। क्यों प्रमी है प्रम किसका होई, जा जल थल मैयल रविया सोई, गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई, जिस राख है आप राम दयारा, किस नहीं दूजा को पहुँचन हारा, रहाओ सब में वर्ते एक अनंता, तातू सुख को होए अचिंता, ओहो सब किस जाने जो वर्तनता, मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवे तुर किरत लिखियासा।

कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पायो जन्म परापत, कर सेवा पज हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दरगहे परवान, जो किछ हुआ सो तुझते होग, और ना दूजा करने जोग, ता मिली है जा लह मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, कर्म पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम, फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास, हर हर नाम अंतर उर्धार, सीगर कारज लिहु सवार, रहाओ अपने प्रभु से हो सावधान, तातू दरगे पावे मान, उकत ज्ञान सगली त्याग, संत जना की चरणी लाग, सर्व जी है जा के हाथ, कदे न छुड़े सब के साथ, उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी चोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभु की आज्ञा सत करमान,

गुरते बचन कटे प्रम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे हार, जिस जन हुए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौरी द्वारे महला पंजवा, जिन पीता माटी ते रतन, गर्भ में राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, किस प्रभु को आस पहरते आई, रमैया रेन साध जन पावो, गुरमिल अपना खसम ते आओ रहाओ, जिन कीता मूर ते बक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवे निध पाई, सो प्रभु मन ते

अब पूरन आशा सिमरो दिन रहन सांस गिरासा जिस प्रसाद माया सिल्क काती गुरु प्रसाद अमृत बिख खाती कौ नानक इत्ते किछ नाही राखन हारे कौशालाही गौड़ी द्वारे महला पंजवा तिसकी शरण नाही पौ सोग उत्ते बाहर कछु न होग तजी सियाणप बल बुद्ध विकार दास अपने की राखन हार जप मन में

गुरका शब्द अमृत रस साथ। अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज। क्या मांस कहो क्या जोर, झूठा माया का सब तोर। करण कराहन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने महले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी द्वारे महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल। महा पुनीत पय सुख सैल, वड्डे पाग पाया साध संग। पार ब्रह्म स्यो लागो रंग, हर हर नाम जपत जन तारियो। अगन सागर गुर पार उतारियो रहाओ, कर कीर्तन मन शीतल भय। जन्म जन्म के किल विख गए, सर्व निदान पेके मन माहे। अब टूडन काहे को जाहे, प्रभ अपने जब पै दयाल। पूरन होई सेव काल, बंधन काट किए अपने दास। सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए। पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया। हर सिमरत नानक सुख पाया, गौरी द्वारे री महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बंद लख खरे। जे तंदे में

काम क्रोध लप्ट्यो असनेहे, सिर ऊपर ठाडो तर्म राए, मीठी कर कर बिछिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतर सियाना, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आंख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना। सब किछ तेरा तू करने हार, अंत नाही।

पहला पंजवा अनुक जतन नहीं हो छुटारा बहुत ध्यान आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे काता चोला रहाओ ज्यो बोहित कै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का लाह से तूख नाम जपत मन होवत तू।

अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना। अनक रूप देख ने पतियाना, पुत्र कलत्र उर्जियो जान मेरी। ओ बिनसे ओए पसमे तेरी, बिन हर पजन देखो बिन लाके। त्रिग तन त्रिग तन माया संगरा तेरा, जो बिगारी कै सिर दीजे दाम। ओए खसमे कै ग्रह उन दुख सहाम, जो सुपने हुए बैसत राजा। नेत्र पसारे ता निरारत पाजा, जो राखा खेत ऊपर पर आए। खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण रा

आई कृष्णा आप बिना हे आप करे रास, नानक प्रभ आगे अरदास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज सियान पलेखी। मेहर मलूक होए देखिया खान, ताके नाही मंत्र तान। तो सुख मोके संत बतावो, कृष्णा बूझे मंत्र बतावो। रहाओ अस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन तेज सुंदर नारी। नच नाचक अखारे गाया, ता मैं मन संतोष न पाया। तखत सभा मंडन डोली चे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। आखेड़ बिरत राजन की लीला, मन ना सुहेला परपंच हीला। कर कृपा संतन सच कया, सर्व सुख एहो आनंद लया। साध संग हर कीर्तन गाये, कहो नानक वड पागी पा।

एह तन मेरा बहुर बहुर उआहू लपतेरा, पुत्र कलत्र ग्रस्त का पासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो बिगे जित राम गुण गाए, कवन तो मत जित करे ए माए राव। जो पलाई से बुरा जाने, साथ कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा सात संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के ना

आओ तुद पावे ता गावा बाणी तुद पावे ता सच वखाणी तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा जो तुद पावे सो सच कर्मा सर्व निदान गुण तुम ही पास तू साहिब सेवक अरदास मन तन निर्मल होए हर रंग सर्व सुखा पावो सत्संग नाम तेरे रहे मन राता एहो कल्याण नानक कर जाता गौरी ग्वारे री महला पंजवा आन रसा जेते तै चाके निमख न कृष्णा तेरी लाके हर रस्ता तू चाखे साध चाखच होए रहे विस्माद अमृत रसना पियो प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जीवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु

हर गुण गावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेड़े ए रस राशि बोर न छोड़े आन न रस तस लवे न।

तू है मेरा तकिया, मन तन अंतर तू ही से आया, मरम तुम्हारा गुर ते पाया, सब गुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर के।

0: संगत की।
1: केबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

बहुत फेर पै कृपन के अब किछ कृपा की जय हो दयाल दर्शन देहो अपना हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जह पनत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया सतगुर स्यों मन मानिया

सेवा प्रवान करनी। शब्द कीर्तन करते हैं ना, अभ्यास करते हैं ना, चीज बच्चों पासों हुई फुलों की खिमा करनी जी, अगे वास्ते चीज बख्शिश करनी जी, गुरु की दीती हुई माता ते नजर करके हजूरी अंदर सेवा हो सके और साहबी का पाठ।

0: ख्वार हैं सब मिलेंगे बचे शरण जो, ख्वार हैं सब मिलेंगे बचे शरण जो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हमें अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखे विखे खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा त्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जम त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत के, गुरु रामदास राखो शरणाए। सुख टल गुर सेविया एनस सहज सुभाए,

केसवा बचौनी अये मैये एक आन जिये बिंदी ओ बकले संसारा भ्रम भ्रम आए

0: मंदिर हर के चरण
1: वाहेगुरु,
0: हर के चरण
1: वाहेगुरु,
0: हर के चरण
1: वाहेगुरु,
0: हर के चरण वाहेगुरु, हर के चरण वाहेगुरु, हर के चरण।

पार अनुग्रह स्वामी मेरे, पार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस पीज है, नाम महारस पीज है, अमृत नाम सुन जय तेरा, कृपा करें ता पीवा, कृपा करें ता पीवा, कृपा करें ता पीवा, कृपा करें ता पीवा, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस पीजै, नाम महारस पीजै, नाम महारस पीजै।

अपनों की जय, वाहेगुरु, अपनों की जय, वाहेगुरु, अपनों की जय, वाहेगुरु।

ऊट काथ काथ कथी कोटि कोट कोटन देंदा दे लेंदे थक पाही जुगन जुगंतर खाही खाहे हुक्म हुक्म चलाई राह नानक विकसै विप्रवाह साचा साहब साच नायम पाचा पव पारु अखहे मंगै देह देह दात करे दातार मोहों के बोलन बोली है जत सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ बड़ियाई विचार करमिया वै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानी है सब आपे सचियार थाप्या न जाई कीता न होए अपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान गावी है सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सो कर लै जाई गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे असमाई गौरीश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे दस भावा बिन पाने के नहाए करी जे ती सिर ठो पाई वेखा बिन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारी आर जा उर्द सोनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई चंगा ना रखाए कहे जस कीरत जग ले जे तैसो नजर न आवई ता बात न पूछे कही कि

दरबार तथा सोहन पांच प्रवान नगरी कर्म पव निशान कछ बगाई उथै पाए नानक गया जप जाई। धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतरु केते कान महेश केते वरमे गाड़ गड़ी है रूप रंग वेश केतियां सुरती।

तव प्रसाद आद रूप नाद मूर्त अजोन प्रख पारु सर्व मंत्र मान देव पेवाद उदारु सर्व पालक सर्व काल को सर्व गोपन काल जत्र तत्र अभराज ही अवधूत रूप प्रसाल नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेख आद ब्रुख धार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैले अनुराग नाम काम विहीन पेख तामू न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैवान्त दाहि एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल खेल खेल नंद को ब्रेक देव देव न जानी जे बे दुर्ग देव रूप रंग न जात बास जानी के जे बोत आत्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जाक मानी प्रतिहीन लोक चौदह के बिखाई जग जा पी जय जाप आद देव नाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप वनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सुरज्यो सुयम पवगण भंजन हार कालहीन कल संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहतो भूतल कपेश अंग राग न रंग जा कहे जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष पंजन मुक्त दायक काम आप रूप मी कानो सत एक पुरख दूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोवृत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेजन पेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाक नेत भक्त नेत कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहुचित मद पार छंद तव प्रसाद गुण गण उदार में महा पार आसन पांग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निधन नाश अजन वाह।

सर्वत्र सुखायेंगे सर्वत्र भूखायेंगे के सर्वत्र द्राणेंगे सर्वत्र प्राणेंगे सर्वत्र देशायेंगे सर्वत्र भेषायेंगे सर्वत्र माने आये सदा एवं प्रधाने आयेंगे सर्वत्र जापे आयेंगे सर्वत्र थापे आयेंगे के सर्वत्र पानेंगे सर्वत्र मानेंगे सर्वत्र इंद्र आयेंगे सर्वत्र चंद्र आयेंगे सर्वं कलिम आयेंगे परम भीम आयेंगे अकलो लाम आयेंगे साहेब कलाम आये हे हुसन वजू है तमाम अंदर जू है आमेश्वर सलाम है श्री किसम धाम है गरीब वाल सकाशता है गरीब वाल परास्ता है बल अंदर मकान है जमीन वाल जमान है तमीर वाल तमाम है रुजी वाल निधान है हरी फल जी मैं रिया गिरे गिना ने कुल तरंगा भेद है भंग है जी जल निवाज है गरीब वाल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है पर भुगत प्रवाह है सुजुगत सदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समाज तो पराज है सदा सर्वसाज है समाज तो सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद है अनूप है अंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में त्रिभर्गंग त्रिवादे गंजे अगाधे सुवंग सर्वभाग्य सो सर्वा नरागे त्रिभग स्वरूप है सज है सूत है गणरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है चाचरी छंद पंग है नंग है बेखा लेख है ब्रह्म कर्म नाद जगाद है जय है वह भूत है दूत है ना सब दास है दंद है बंद है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है अलख है दिख है अलेख है पेख है टा है गाय संभ है गंभ है नीला नाद है नित्य सुनत है जात है जाद है।

निरसाकम श्री कैमितौमी कैं सदैव प्रवाहे जय अजय भगवती शाम दाव प्रसाद के जाहर जूर है के हाजर है जूर है मेसर सलाम है समाज तलक लाम है के साहब दमाग है के उसल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम।

करना लिया है, अर गाल्या है, खल खंडन है, मह मंडन है, जगतीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वारण है, त्रत के धरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास है, सर्वनाश है,

बरदे बर हैं गरणा कर हैं अजप अजप हैं अथप अथप हैं अग्रत अग्रत अमृत अमृत है अमृत अमृत गरण अग्रत अग्रत अग्रत तरणी दृत है अमृतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अग्रत अग्रत अमृत अमृत है अजब अग्रत है अमृत अमृत है नर नायिका है गल गायिक है विश्वम्बर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है विश्वम्बर है

रूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पौज पौजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते।

गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भवैख भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारी सरी बात सरी भगवान भजे बिन अंत को अंत के दाम सुधारी तीर्थ नहान उदय दमदान सो संजम ने मन एक वसेख है वेद पुराण देव कुरान जमीन जवान सुवान के पेख है पौन आहार जति जल धार सब सब चार हजार के देख है सरी भगवान भज बन भूपत एक रति बन एक न लेख है शुद्ध सुबाहा दुरंत दुवाहा सुशासना दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन मैं खारू पर्वत पंखा लेना हलाएंगे तौर रीन मरोर मवासन माते मदंगन मान मलाएंगे सरी बल सरी भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बटे बरे हर बचारे सारगी दार पछैया तौर देश मलंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गुड़ान को तोड़ नहार उस बात नहीं जग चार लवैया सब श्री सब को सर नायक जाच का नेक सो एक दवैया दान देव नंदन साचर भूत भविख भगवान जपेंगे जीव जिते जल में सल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सदर सब अब लोग चपेंगे मान वेंद्र गजेंद्र नरा तप जौन तरलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिख दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विषम सरी पद अंत बसे जम बाज भरेंगे जे नारू सरी पद के बरसें पग।

भाई सब जुगब धरा काल पाए कर विषन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल सब जगत बनायो जबन काल जो किसम कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जबन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहि हमारा जबन काल सब जगत बनायो देवदंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सदरन को बल मोहबल कियो

कहे क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखया पाया।

लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने प्रविचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे पहला क्रोध सच्चा

0: पैव सूरज पैव चंद को करोड़ी कल्पनांत पैव छद बुद्ध प्रणा पैव चागाने पैव दूत महामूसूर पैव चावै जावै पूर सगलिया पौ लिखिया सगले नानक मेर पौ नरूका सचे मल्ला पहला
1: नानक निरपौ निरंकार होर के तेरा रवा केतिया कन सहाड़िया।

बाजार में आए कदे बाजार गवेरा जनानिया बोले अस्पताल लटकिया के मुंडे लटकिया के हार चितन पइए लाल का सित हो इशार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करना सार कर्म मिले ता पाई है और हिकमत हुक्म।

0: जंतु पाए कै संभाले सब नहा। जिन करते करना किया चिंता भी करनी ताहा। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस मन अभग। नानक सचे नागन क्या टिका क्या तग। महला पहला
1: लख नेकियां चंगियाईयां लख ना प्रवाण। लख तक उपर तीर्था सह जोग बेबाण। लख सूतन संग्राम रण में छुटे प्राण। लख सुती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करते करना किया लिखिया अवन जान। नानक मती लिखिया कर्म सचा ने चार कर्म सचा साहिब।
0: जिन सचो सच बरताया

कूड़ मिठा कूड़ मा क्यों कूड़ डुबे पूर नानक वखाणे बेनती सुबाज कूड़ो कूड़ महला पहला सचता पर जाड़िया।

योग सद्दंग ज्ञान सद्दंग वेद सद्दंग ब्राह्मण है, खत्री सद्दंग सूर सद्दंग शूद्र सद्दंग प्राकृत है, सर्व सद्दंग में सद्दंग ये को जाने भयो, नानक का कदा है रंजन देव भल्ला दूजा, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवात आत्मा आत्मा वास्तव जे

पाव भगत करनी सदाए, तौ नानक मुख अंतर पाए कर सज्जन कुमारिया। जित मिले खत्म कुमारिया।

पौड़ी कपल रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दूजग चालिया तंद से खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना कर अवगुण पछोता।

मच्छे टिका तेर धोती का खाई हाथ छुरी जगत कसाय नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेश ताल पुझे प्राण अपाख्या का कुखा बकरा खाना चौके ऊपर के सेना जाना जे कै चौका कड्डी तार ऊपर आए बैठे कूड़िया मच पट्टे रे मच पट्टे यो अन्न छाडा फिट्टे तन फिट

पंडो ही पंड जय पंडे बाईना को नानक पंडे बहरा एक ओ सच्चा सो चित मुख सवा स्वाही है पगार टीचार नानक ते मुख जिले तित सके दरबार।

चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया कदम ना पाए साथ आ दुआए सेवा करे था कुछ पाए मान नानक जिसनु लगा कुछ मिले लगा तू प्रभु।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।

श्री गुरुदेव नमः अस्तपदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जास विशंभर एक नाम जप अगंत अनेक देख प्राण सिमरत सुधाकर किने राम नाम इकाकर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनि न आवै कंखी एक दर्श तुहारो नान कुन संग मोह उधारो सुख मुनि सुख अमृत पर नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कै सिमरन दूर जम नसै प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभु सिमरत कछ विघ्न न लागै प्रभु कै सिमरन अंजन जागै प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व धन नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभु कै सिमरन दुर्गह मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सुफल चला से सिमरह जन आप सिमराए नानक ताका लागो पाए प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा प्रभु का सिमरन उदय मूचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु का सिमरन सब किछ सुझै प्रभु का सिमरन नानी जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माहे जमाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से धन बनते प्रभु को सिमरह से पत बनते प्रभु को सिमरह से जन प्रवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तन अंध कनेरे प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कभु न चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन को प्रभु मया नानक जन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदि जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माह उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावहु सूख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप्त होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जप्त निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जप्त आघावै जे मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै झूठत नहीं कोट लख वाही नाम जप्त तह पार पराही अनक बिघ्न जह आय संघार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साध कै संग जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जह पैंडै महा अंधक भारा हर का नाम संग उजियारा
जहां पंथ तेरा कोना सियानु हर का नाम तह नार पछानु जह महापयान तप बहु कान तह हर के नाम की तुम ऊपर शान जहां त्रखा मन तुझ आकर्ष है तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरतन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साधक मात हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रचे रंग एक नानक जन कह बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर का नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक दीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अगन जानी ओट पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व तंडोल पूज सनाहे हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म करिया सगल त्याग मन मध्य करिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम कर बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै महा उदास तीसर थीवै अगन माहे होमत प्राण कनक अस्तव है भरपूम दान न्योली कर्म कर बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तौपि होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान नमन ते हुटै सोच कर दिनस अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कभू न बिख्या तरै जल सोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पत्त बहमूच बहुत स्याणप जम का पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै देख अनेक अगन नहीं बुझै कोट अपाव दुर्गह नहीं सिद्ध है झूठ सनाही ऊ पयाल मोह व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जमदान गोविंद भजन विन चल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जेको मांगै साध बिना की सेवा लागै जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जेको अपनी शोभा लोरै साध संग एह होमै छोरै जेको जन्म मरण ते डरै साध बिना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक दाता बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गन्य सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन कौ धन तेरो नाओ मिथावे कौ नाव तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा को देहो दान करण करावन हर स्वामी सगल घटा के अंतर जामी
अपनी गत नित जानहु आपे, आपन संग आप प्रवराते, तुमरी औसत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोय। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हरिया, सगल उद्यम मह उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जास सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जे घट वसै हर नाम। श्लोक निर्गुण सो प्रभ सदा समाल, जिनकी आतिस चीत रख नानक निधि नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जो वन भोजन सुख सूध, बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख अप्याओ बैठ काओ दैन, एह निर्गुण गुण कछु न बुझै, बख्स ले हो तव नानक सीझै, जे प्रसाद धर ऊपर सुख वसह, सुत भ्रात मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदायी पवन पाप अमुला, जे प्रसाद भोग है सब रसा, सगल समग्री संग साथ वसा, दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना, तिथे त्याग अवर संरचना, ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काड ले हो प्रभ आपे, आद अंत जोरा कन्हार, तिस स्यों प्रीत न करे गवार, जहाँ की सेवा नव निंद पावे, ता से मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंधा जान से दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसे बसारे मुग्ध पजान, सदा सदा एह भूलनहार, नानक राखनहार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साथ छोड़ झूठ संग मचै, जो चढ़ना सो अस्थिर करमान, जो होवन सो दूर परान, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्दव प्रीत भस्म संग होए, अंधकूप में पत्र बिकराल, नानक काट ले हो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पेख अंतर मल माया, शब सुनाहि कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तम स्वाह, गल पात्र कैसे तरह अथाह, जाकर अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, करगह लेहो ओढ़ निभावै, कहाँ बुझारत बुझै डोरा, निष्कहिया तव समझै भोरा, कहाँ बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तव पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत उहां उस गवन, करतार करना में दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा करै, संग सहाय सुआवे न चीत, जो बैराई ता सो प्रीत, बलुआ के गृह पीतर वसै, अनंद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर्मा न मनह प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ द्रोह, या हो जुगत बिहानी कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा महसूब कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग आन सुआए, नानक कहू नसी जाए, बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण विखोट गुवावै, एक भी न दे दस भी हिर ले, तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे, जिस ठाकर क्यों नाही चारा, ताको कीजै सब नमस्कार, जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया,
अगणत साहो अपनी देरास, खात पीत बरत अनंद उलास। अपनी अमान कछ बहुर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होए। जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रख, प्रभु की आज्ञा मन मथ। उससे टोगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।

प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सर्वन धान प्रभु तेरी मया, आप हो कछु

लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मिता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा अष्टपदी। साध के सम्मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली कोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग बुझे प्रभु नीरा, साध संग सब होत न बेरा, साध के संग पाए नाम रत्न, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग नकत हूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब नीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस क्यों नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हौताप, साध के संग तजा सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कब हूं तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर रहे, साधु के संग अजर सह, साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सर धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कुलोकत है, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग नांदिर्थ आ जावे, पार ब्रह्म साध हृदवसै, नान कुदरा साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट जीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियाने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद ना पाई।

लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्तपदि। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों सुदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगाश जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सरल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।

ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बस प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की नित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूप न देखै नेत्र साधु की टहल संत संग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब ते जान आप को मंदा गुर प्रसाद दिखिया पर हरै मन की बासना मन ते तरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट म देखो ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवै निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत की तुम संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ावर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत।

साध संत पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद राम नाम आत्म सोद, राम नाम सार रस पीवे। उस पंडित का उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण स्मृत बुद्ध है मूल। सुख मह जन अस्थूल, चौ वर्णा को दे उपदेश। नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। चौ वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए। साध संपावे जन कोय, कर कृपा अंतर उतार। पस प्रेत मुग्ध पात्र को तार, सर्व रोग का औखद नाम। कल्याण रूप मंगल गुणगान, काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म। नानक जिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास। तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नगरी आया। दास दसन तन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान। सो दास दर गह परवान, अपने दास को आप कृपा करे। तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास। ऐसी जुगत नाम राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे। जीवन मुक्त सो कह

नानक रचना प्रवृचे बहुविध अंक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होय पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पहे तीर्थवासी, कई कोट वन पर।

नानक करते का अंत न पावे। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपे गात मन।

चित लाव हो चित चित लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी दसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सशिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थास्त कई कोट किए रतन समुद्र कई कोट नाना प्रगार।

किए धनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तह तह रखे नानक सब किच प्रभ कै हाथे कई कोट पहे बैरागी राम नाम संकटन निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लानते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा।

बार पसरे पासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते होए प्रभ नाहि समात ताका अंत न जान कोई आपे आप नानक प्रभ सोए।

परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण सब एक है दूसर नाही को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी।

अधर रहावै, हुक्मे उपजा हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तां पात्र त्रावै, प्रभ भावै बिन साथ ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ भावै तां पत ते उधारै।

तिस तत्काल दह दुष्प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस, ता का लेखा न गणै जगदीस। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बंत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, कर्म करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई पन थियो। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हर्ष रंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहू नृत करै बहु भात, कबहू सोय रहै दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होत रवाल। कबहू होय बह बड़ राजा,

गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बख्यान, कबहू मोहन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए दिया, अनक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय, कबहू साल सं

नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाना न जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आप स्काओ कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहुत जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होय जाय भस्मंत

सब कछ उसका ओ करनेहार। उससे भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए। अपने चलित आप करनेहार कौतुक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदे संत का दुखन आर जा कटे संत का दुखन जमते नहीं छुटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक न पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन सोबाते हीन संत के हते को रखे न कोय संत का दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरह संत के दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग जो लवे संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा में जले संत का दुखन सब को चले संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए ती गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख के टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच से टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर के थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर्ण राखन हार नानक संत पावे तै ले उबार संत का दुखी यों बिललाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटा अकेला ज्यों बुआर तिल खेत माहें दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सर में त्या कहत किरत निंदक का सुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर्द है मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी उच्चले निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेट कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसद करहो दिन रात तिसह त्याव हो साथ गिरात सब कछ वरत तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया।

नानक दुख भरम पौ जाए अष्टपदी मानुख की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रह अघाए बहुरना कृष्णा लग आए मारे राखे एको आप मानुख कह कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न न लागे कोई उस तुद मन में कर निरंकार करमन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला कर लेह जियो नैनो टेक ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन हो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत की ओह सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हे निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुझ है तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अनदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मह सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिया जम की पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तुसह न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत होएला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सूखम सोई असूल न किछ जन्मे न किछ मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अगनासी नाही किछ खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए का नानक जाप जिन पर जाता सो सो भावंत सगल संसार

तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व दिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते वृथा कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचे कोय जिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत है नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता हो क्या को गर्व है जा सब किछ किसका दिया दर्ब है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहतावे जे को

उठाए ना ना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके थाओ जप जप ती वह नाम हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन्न ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत नित बुझै जो कोई नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करण हार अगर

स्वाद प्रभ कै रंग रास जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी।

आकाश सुमार है, अपने जनका पर दाताक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रख है, ताकि घट में कोई

जप नान प्रभ लख विदानी बारंबार बार प्रभ जपी है ते अमृत एह मन तन त्रपी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाहीं दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्तानि मन तन्ना मह नाम सुमने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सड़ काम बोल हो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करहे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यों रह है समाये जो हो आहोवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आत पहर प्रभ बसह दूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन देह

सार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस सियान तो लिया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन तेख पुनीत पर सच्चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आघानी मन संतोष आत्म पतिया ने पूरा गुरा क्यों जाका मंत्र अमृत वृक्ष पे।

पहुंचत प्राणी, अग्न अगोचर सब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होय। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सत उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप,

अंध भया दुख नाथे पाई, जन्म मरण के निते अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, तित पाई चूके प्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला कहार जिन सगली मोही,

यह धन संत हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख हो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंठ उठतार है सो धन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरणी अंक उपावे रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वनिधान में।

शुद्ध नहारे सिमरत शास्त्र भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटा है मूर्ख।

तब की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग,

सत्संग हजूरी जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिस्ते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांढ है गुरपुरै तत् है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो इहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन होती छार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर इही सुआओ नेत्र उपेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दीजै करमया

काल सर्व कटा कर्त प्रतपाल आदि पुरुष कारण करता भक्त जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन हित हम निर्गुणियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत

जब अकार इह कसना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष शोक कहोक से व्यापत। जब अपन आप आकार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करना हार न दूजा। जब होवत तब केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अग्न पार, तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण तब सहज स्वभाव, तब शिव सतत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निद्र कवन कत डरे। अपने चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अग्न अपार। अब नासी सुख अपना सुन, तह जन्म मरण कहो कहाँ बिना सुन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जन की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान।

जय अचल अशेर अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप को आप है आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता कह कौन अचिंत।

अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जान पावे तृत उपाय अपने पहाने लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किछ होय आपन सूत सब जगत परोय जा को प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो संदर्शी तत्कविता नानक सगल सृष्टि का देता बीज अंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो हुआ जिस मनो विसारे तिस ताजावर कहाँ को जाए।

अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो व्याप, प्रतपालै जीअन बहु भात, जो जो रचियो सो तिसै त्याहत, जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास करमान्या, करनहार नानक इक जान्या, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बचया निरंकार, बंधन तोड़ भय निर्वैर।

मोल न पाई गुण अमोल, सर्व जोत में जाकी जोत, तार रहो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नाथ, नानक दिन में एहो विश्वास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, कर्म करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर की ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत्ति।

आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक जिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वर्तारा सर्व नैन आप ते खनहारा सगल समग्री जा का तना आप नजस आप

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को

के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म नित कर देख। साथ साथ सिमरह गोविंद, मन अंतर की प्रचिंद। आस नित त्यागो तरंग, संत जना की धूल मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न साध।

उत्तम श्लोक साधु के बचन अमलीक लाल ए रत्न संत कुमावत होत उधार आप कर लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकर मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महान कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आग मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन

जिस मन बसै सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहर न होवे आवन जान, हर धन खात चलै जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए खेम।

कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख तने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोय सब जुग महता।

हरनाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाते मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए पीत तिस जन आवे हर ब्रवजीत जन्म मरण का दुख निवारै दुलभ देह।

जो जीवन मरना जाने सो पंच सहल सुख माने सोरठ कबीर जी उन्हें अमर जीवन प्राप्त होंगे। तो हजूर फरमाते ने हके यार बाशुत कि दुश्मन को नद जी ओ एक अकाल पुरख वाहगुरु मित्र बन जावे। बहुते मित्र बनान दी लोड़ भी की है, बहुते दोस्तां दा करना भी की है, क्योंकि जो कठिनाई आउंदी है दुनिया दे बहुते दोस्त संग ते साथ छड़ जांदे ने। एक एक प्यारे नू आपू इजाजत दे दित्ती उहने भाई मती दास जी, भाई दयाल दास जी, भाई सती दास जी शहीद हो गए, ते फिर भाई गुरदत्ता जी नू भाई उदा जी नू आपने हुक्म कर दिता असी हुण होर कारनामा करना चाहते हैं, तुसी भी चले जाओ और जाके सिखी दी सेवा ते संभाल करना। प्याला खो श्रीवा अपने आप नहीं सन गए, वो भी चाहते सन, भाई गुरदत्ता जी भी चाहते सन, भाई उदा जी भी चाहते सन, वो भी गुरदेव तो पहला जामे शहादत पी जाते, पर हसूर ने हुक्म किया नहीं ने हुण तुसी चले जाओ, अस इत्थे हुण होर कुछ होण वाला है, पाणा वर्तन वाला है, पाणा वरतान वास्ते आए हाँ, क्योंकि गुरु साहिबाना ने कदे शरीर वल बहुता ध्यान नहीं दिता। जदों भी शरीर दी शहादत दा वक्त आया उदों ये प्रेरणा दिती जिवें गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया सी, छड़ना है शरीर संसा नहीं कोई, वली रजा खुदा बनदी है ऐसी होई। पंजवां चरण भाई केसर सिंह शिब्बर बंसावली नामा प्याला खो श्रीवा। मैनू कोई संसा नहीं, मैं शरीर का त्याग करना है क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म ही मैनू ऐसा है, फिर मैं ओदे हुक्म के सामने इनकार तो कर ही नहीं सकता। हुक्म के सामने कौन इनकार करे, इसलिए तुसी चले जाओ। जब वो भी दोनों प्यारे चले गए हजूर का शरीर इकला रह गया, ते फिर धर्म रक्षक ने यह श्लोक उच्चारण किया, सानू समझाया इको ही मित्र बनाओ, उस तो इलावा बहुते मित्रां दी जरूरत ही नहीं रह जाती।

प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैस्टर्न सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। तुसी विलियम्स लेक के हल्के विच यह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 ते सुन रहे हो। श्रोतो साडा यह प्रोग्राम दुनिया के सारे देशों में SikhNet.com के वेबपेज के चैनल 16 तो भी सुनिया जा सकता है। इस उद्यम लिए असीं SikhNet वेबपेज के सेवादारा की अपारी हाँ। सिक्खी विरसे के वास्ते यह प्रोग्राम शनिचरवार ऐतवार 3:30 बाद दोपहर पैसिफिक टाइम उत्तरी अमरीका के दूसरों शहरों में अमृतवाणी रेडियो तो भी सुनिया जा सकता है। इस उद्यम लिए असी अमृतवाणी रेडियो के सेवादारा के तह दिल तो धन्यवादी हाँ। लो जी अच एक बार फिर हाजिर हाँ आपसी नाल सिक्खी विरसे की सांझ पाने लई। सिख धर्म मानववादी धर्म है। दसां गुरुआं ने सांझी वालता

विश्वव्यापी संदेश इसमें दिता है जिस सदका इस दिन नजर सब थां एक अकाल पुरख की जोत नूं वेख के विकसदियां हन। प्रवान करो जी कलगीधर पिता शहनशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की बख्शिश की चढ़ती कला की प्रतीक प्यार अते सत्कार परी गुरफते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

हे संत जनो, परमात्मा दी सिद्ध सलाह दी बाणी जिस मनुख दे अंदर आ बसी उसने अपनी सारी चिंता दूर कर ली। हे नानक, दया दा सोमा प्रभु उस मनुख उत्ते मेहरवान होया रहिंदा है जो मनुख उस सदा कायम रहन वाले प्रभु दा नाम उचारदा है। श्रोता जन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन रचना, स्थापना, महानता अते विशेषता केवल सिख कौम जां दूसरे हिंदुस्तानी भाईचारे तक सीमित नहीं, सगों ए समूह मनुख जाति लई गुरु साहिबान दा धार्मिक तोहफा है अते समुचे संसार दे धार्मिक इतिहास विच अपनी मिसाल आप है। गुरु अर्जन साहिब जी ने इस ग्रंथ की संपादना करके इस धर्म ग्रंथ नूं सिख धर्म अते इसके श्रद्धालुओं तक ही सीमित अते विशेषित नहीं किया। असली मायने विच समूह संसार अते समुची मानवता दे सर्व सांझे हित, लाभ, उन्नति अते कल्याण नाल इसका संबंध जोड़ दिता। गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना किहो जिहे समय अते क्यों गुरु साहिब जी ने कीती, इस नूं समझण लई ले जाओ अपनियां विपत्तियां नूं 15वीं सदी दे हालातां वल अते विचारो उस अजोके समय नूं जदों हिंदुस्तान दी धार्मिक, राजनीतिक अते समाजिक व्यवस्था अपनी अजोक्ति दे शिखर तक पुजी हुई सी। मौके दे हुक्मरान मुगल बादशाहां दे जुलम दी कहर सिखां ते सी। बोधी, जैनी अते हिंदू मत दे धार्मिक अपनी हिफाजत करन विच असमर्थ सन। उस समय दा समाज वख-वख जातियां, धर्मां अते इलाकियां दे विषय उपर आपस विच वंडिया होया सी। इस वंड कारण समाज संगठन वास्ते कोई केंद्री तुरा कायम नहीं सी, जिसके सिट्टे वजो विदेशी हमलावारां वास्ते खिलरे पुलरे असंगठित समाज नू गुलाम बनाना बहुत सौखा सी। अजिहे अंधकार समय भारतीय समाज की अपनी सदियों पुरानी पछाण खुरदी जा रही सी। जल, जल अते जमीन मालकां दे हत्थों खिसकण लग पए सन। हौली हौली समुचे भारतीय समाज नू अपनी होंद गुआचती महसूस होण लगी। श्रोतियो, इस संकट में स्थिति का मुकाबला करन वास्ते समुचे भारत विच संत परंपरा ने जन्म लिया। वख वख इलाकियां दे संतां भगतां ने धर्म अते जाति दे नाम तो पैदा हुईयां वंडियां नू दूर करके समुचे भारत विच इक सर्व सांझा समाज बसाउण वास्ते आवाज बुलंद कीती अते मानव मुल्लां दी प्रमुखता नू स्वीकार करन ते जोर दिता। दक्खण तो उठ भगती लहर उत्तर

पर गुरु परंपरा इस भक्ति लहर तो पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि गुरु परंपरा अति भक्ति संस्था के बखरे आधार सन, परंतु समय दियां प्रस्तुतियां सांझियां सन। उत्तरी भारत विशेष करके पंजाब की धरती विदेशी हमलावरों द्वारा पूरी तरह नाल लताड़ी जा चुकी थी और इस सभ्याचार नूं पूरी तरह नाल खत्म करने की नीति चल रही थी। दक्षिणी भारत का सभ्याचार

बिन गुण कामन आवई टह टेरी तन खे मेरे मन लैला कर जाहि गुरमुख नाम सलाहिए हुम निवरी पाहि राउ। सुन सुन गंडन गंडिए पा लिख पढ़ बुझै पार तिसना अहनस अगली हुमै रोग विकार। ओह बेपरवाह तोलवा गुरमत कीमत सारु लख सयाणप जे करी लख सां प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप हर जप जिया रे छुटिया गुरमुख चीनै आप। तन मान गुर पहि विचिया मन दिया सिर नाल त्रिभवन खोज टुंडे लिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभु नाम।

है। तुझते नक्षी फूट मरा ना जाना मेओ न जाना जाली ता जान दुख लागे ता तुझे संभाली। रहाओ तू भरपूर जा न्याम।

0: 哎呀没有办好了的事，哎呀没
1: 哎呀差点干了个你知道मेरे माता पिता मेरे सिर दे उत्ते ना रहे ते पिता अरदास जी पिता जी सकाल चलाना कर गए ओदी अंतम रस्म जिहड़ी अदा होई ते तुहाडे विचों कोई अंतम अरदास दे उत्ते आया सी उदों मैथों डर लगदा सी तुहानू वी जे असी चले गए ये जिहड़ा बच्चा है ते इहदे नानी साडे गल ना पा जावे वी तुसी ये

चूना मंडी छोटी जी माता ब्याह तौर दी दुख नु पार लगाया माता ब्याह तौर दी दुख नु पार लगाया।

0: पुराने बुजुर्ग है ये सारे जानते है इंडिया विच ये गल मशहूर है भी वार आ जड़ी शौकी और गाँवे होंगे सी वार वार कहने ताड़ी गाँवे हैं जिन्हां ने मां का दुध है जरा तीन साल चुंगिया हो खान मशहूर थी क्योंकि वारा जड़िया बड़े जोश नारा ताड़ी से गाँवे है रस्सा खिंचन वाले वागू जोर लगता है अजे उसे आओ ढाडी सिंह मिर्जे की वार है जेडे ये पढ़ रहे हैं सुनो
1: तेनू चढ़े नशे हंसा दे।

कलमा कहाँ आखी है? इधर मेरे छोटे वीर चमकौर सिंह ढाडे सिखो साहब बैठे हैं चंगी मास्टर, ये वारा जड़िया बहुत लाउंदे हुंदे सी ते हुण तां करजा फरजा जड़िया चलिया वालियां ओह सानूं चंगियां नहीं लगदियां। आपां ढाडी सिंघां पासों पुराना राग ढाडियां वाला राग आ जिहड़ा सुन रहे हैं, सुनो।

सहारे का कोई एंड नहीं होना। क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहेगा, सवाल सवाल ही रहेगा, गल मुकनी नहीं। कहने लगे जेड़ा कादर नूं ढूंढदा ना कुदरत विचों प्रभु की प्राप्ति लोचदा ना, उस मनुख नूं किसे सिंगा ते चुकी खलोते बलद की लोड़।